आज नवरात्र को दोस्रो दिन आज महाशक्ति की देवी दुर्गालाई ब्रह्मचारिणी नाम र स्वरूपमा पूजा गरिन्छ। ब्रह्मचारिणी माता दुर्गा को द्वितीय शक्ति रूप हो। सचिदानन्द का अभिन्न विग्रह महाशक्तिहरू मध्ये यी देवी ब्रह्म का आत्मज्ञान गराउने ब्रह्ममूलक महाशक्ति हुनाका कारण देवी ब्रह्मचारिणी को नामले विख्यात छिन्। यहाँ ब्रह्म को अर्थ तप हो। वेदस्तत्त्वम तपो ब्रह्म। यस कथन अनुसार वेद तत्व को रूप में अनि ब्रह्म तप को अर्थ में प्रयुक्त हुँदछ। यस प्रकार ब्रह्मचारिणी को अर्थ हुन्छ ब्रह्म वा तप अनि चारिणी को अर्थ आचरण गर्ने, अर्थात जसले तप को आचरण गर्छिन् उनैलाई ब्रह्मचारिणी कहलाइन लागिन्।

सर्वसत्र विनाशिनी रूपम देहि जयं देहि इशो देहि निशो जहि नन्देव्य सर्वदा भक्त्या चंडिके द्रीतापहे रूपम देहि जयं देहि इशो देहि निशो जहि तुभद्रो भक्तिपूर्वं त्वां चंडिके व्याधिनाशिनी रूपम देहि जयं देहि यशो देहि निशो जहि चंडिके सततं मे त्वां हर्षयन्ति अभक्तितः रूपम देहि जयं देहि यशो देहि निशो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपम देहि जयं देहि यशो देहि निशो जहि विदेहि दिशतां नाशं विदेहि बलमुच्चकैः

जयन देही यशो देही दिशो देही सुरासुर शिरोरत्न निगृहत तरणेऽम्बिके रूपं देही जयन देही यशो देही दिशो देही विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं धनं कुरु रूपं देही जयन देही यशो देही दिशो देही प्रचण्ड दैत दर्पग्ने चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयन् देहि यशो देहि दिशो देहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरि रूपं देहि जयन् देहि यशो देहि दिशो देहि कृष्णेन संस्तुते देवि सस्वद्भक्त्या सदाम्बिके

0: मन्त्री एतदुक्तवान्। सः विशेषतया अवदत् यत् विकसितभारतस्य सङ्कल्पं पूरयितुं देशस्य युवशक्तिः महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वक्षति।
1: आज कंपोनेंट से टेक्नोलॉजी और फिनिश प्रोडक्ट का हर राज्य में केंद्र सरकार प्रोडक्ट चेन को मजबूत कर रही है और इन्हीं कोशिशों का परिणाम है आज हम दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। 2014 से अब तक हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट 11 टाइम्स बढ़े हैं, हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट 50 टाइम्स बढ़े हैं और हमारे इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट ने भी नया रिकॉर्ड बनाया है।
0: सर्वोच्च न्यायालयेन शान्तिपूर्णरीत्या एकत्रितानां जनानां अवैधनिगटनं वारयितुं सामान्यम् आवागमनं सञ्चालितुं च अधिकारिणः निर्दिष्टाः। न्यायालयेन निर्दिल्ल्यां मार्गावरोधाय वेरिगेटिंग व्यवस्थायाः समीक्षा, मेट्रोसेवायाः समयानुसारं सञ्चालनम्, अन्तर्जालसेवा च निर्बाधरूपेण प्रवर्तयितुम् आदिष्टम्। न्यायालयेन उक्तं यत् अधिवक्तॄणां दायित्वानां निर्वहणे बाधा न कर्तव्या। सर्वोच्च न्यायालयस्य निर्देशानां कथितोल्लङ्घनाय अवमानना कार्याचरण सम्बद्ध याचिकायां न्यायालयेनोक्तं यत् असौ समेषां पक्षाणां मन्तव्यं श्रोष्यति, सुनिश्चितं च करिष्यति यत् कस्मै अपि असौविध्यं न भवेत्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
2: आकाशवाणी वार्ताभिः संयोज्यन्ताम् एक्स्पटले @AIRNewsAlerts इत्यनुसरन्तु अथ सद्यो वृत्तान्ताय च newsonair.gov.in इति जालपुटम् अवलोकन्ताम्।
0: क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ इन्दौरनगरस्य होल्कर क्रीडाङ्गणे भारतीय दलेन वेस्टइंडीज दलं 14 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से दैनिक यात्रा आसान होगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी हैं।
1: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
3: चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में इन चुनौतियों का समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की।
4: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखें, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
3: दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुर्गा ई ऑटो योजना शुरू करने जा रही है। दुर्गा यानी ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर विमेन एंड ट्रांसजेंडर। योजना का उद्देश्य महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 1170 ऑटो महिलाओं के लिए जबकि 130 ट्रांसजेंडर समुदाय के लाभार्थियों के लिए आरक्षित होंगे। इसके लिए निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा। सऊदी अरब के रियाद स्थित किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को हुए हमले में घायल एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने शोक संतप्त

तो परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। दूतावास ने पार्थिव शरीर जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता देने की बात कही है। भारतीय नागरिक सहायता के लिए सऊदी अरब में 24 घंटे उपलब्ध टोल फ्री नंबर है 800-247-1234 पर आप संपर्क कर सकते हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया है कि होर्मोज जलडमरू मध्य में मार्शल द्वीप के झंडे वाले टैंकर एमटी वाल्थोरा पर हुए हमले में सभी 11 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। श्री सोनोवाल ने कहा कि ओमान के सोहार एंकरीज में भारतीय नाविकों को ले जा रहे टैंकर एमटी पेट्रो डॉल्फिन पर ड्रोन से हमला किया गया। जहाज पर सवार 11 भारतीयों में से 9 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि 2 लापता है। स्थानीय तटरक्षक बल लापता भारतीयों की तलाश में जुटा है। सरकार संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है और बचाव अभियान में हर संभव सहायता दी जा रही है। इस बीच विदेश मंत्रालय ने कल होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमले की निंदा की है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक अन्य हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। यमन के हूती विद्रोहियों ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हूती विद्रोहियों पर हमले करने को लेकर अमेरिका जल्द फैसला लेगा। वहीं ब्रिटेन के रक्षा मंत्री वेस स्ट्रिटिंग ने संकेत दिया है कि ब्रिटेन सऊदी अरब को और सहायता दे सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमलों को रोकने पर सहमत हो गए हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये युद्धविराम तुरंत लागू हो गया है। इंदौर में खेले गए तीसरे टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली है। 224 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 209 रन ही बना सकी। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए। इससे पहले भारत ने 223 रन बना लिए। अभिषेक वर्मा ने 69 रन की पारी खेली। अर्शदीप सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जीवनमा समस्या आउन सक्छ, आँसु आउन सक्छ, हारको अनुभव पनि हुन सक्छ, तर जबसम्म हाम्रो मुटु धर्किरहेको छ तबसम्म आशाको स्पन्दन बाँकी रहन्छ। त्यसैले हाँसिरहनुहोस्, सपना देखिरहनुहोस्, आफूमाथि विश्वास गरिरहनुहोस् र जीवनलाई हरेक दिन नयाँ स्पन्दनका साथ जिउनुहोस्। र आजको कार्यक्रम स्पन्दन आजलाई भने यतिमा नै पूरा गर्न चाहन्छौँ। श्रोता, समय यस बेला बिहानको 8 बज्न लागिरहेछ। त अब केही क्षणमा यस केन्द्रबाट रिले गरी सुनाइरहेका छौँ आकाशवाणी दिल्ली केन्द्रको समाचार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के युवा अपनी प्राचीन सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम। दिल्ली सरकार दुर्गा योजना के अंतर्गत महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को 1300 ई ऑटो वितरित करेगी। सऊदी अरब के रियाद हवाई अड्डे पर 2 दिन में दूसरे हुती हमले में एक व्यक्ति की मौत और 11 लोग घायल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रूस और यूक्रेन तत्काल प्रभाव से ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने को सहमत। जिबूती तट के पास एक नाव पलटने से 147 लोगों की मौत। और भारत ने तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 14 रनों से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं में दुनिया की उभरती चुनौतियों का नए और बेहतर समाधान देने की क्षमता है। चेन्नई में जयगोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया आज नई चुनौतियों के समाधान खोज रही है और उन्हें पूरा विश्वास है कि भारत के युवा इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं।
2: विकसित भारत के लिए जो नए आइडियाज चाहिए, जो नए सॉल्यूशंस चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा। टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस एंड यू हैव द पोटेंशियल टू प्रोवाइड दिस दोज सॉल्यूशंस।
1: प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की। श्री मोदी,
2: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखें, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
1: श्री मोदी ने राष्ट्रीय एकता और तमिल संस्कृति की समृद्ध विरासत पर भी बल दिया। उन्होंने प्राचीन तमिल ग्रंथ तिरुकुरल का उल्लेख करते हुए कहा कि ये जीवन और निरंतर सीखने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से बड़े सपने देखने, नए तरीके से सोचने और निडर होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि आधुनिक नवाचार और सांस्कृतिक विरासत से जुड़कर युवा एक प्रगतिशील और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के साथ वैश्विक स्तर पर भी पहचान बना सकते हैं। दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुर्गा ई ऑटो योजना शुरू करने जा रही है। दुर्गा यानी ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर योजना का उद्देश्य महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 1170 ऑटो महिलाओं के लिए जबकि 130 ट्रांसजेंडर समुदाय के लाभार्थियों के लिए होंगे। एक रिपोर्ट।
3: योजना के पहले चरण में पूरी दिल्ली में जिलेवार तय कोटे और पात्रता की शर्तों के अंतर्गत प्रत्येक राजस्व जिले में महिलाओं के लिए करीब 90 इलेक्ट्रिक ऑटो और ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए लगभग 10 इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने कहा कि इस योजना के माध्यम से राजधानी की महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को इलेक्ट्रिक ऑटो का मालिक और ड्राइवर बनने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगी। दिल्ली सरकार ने बताया कि इस योजना में प्राप्त आवेदनों की जांच संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय कमेटियां करेंगी। यह जांच प्रत्येक

0: व्यवस्था की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत दुर्गा इलेक्ट्रिक ऑटो के पंजीकृत मालिकों को पहचान पत्र, दुर्गा जैकेट और कैप भी प्रदान किए जाएंगे। सौम्य की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे मेरा युवा भारत मेरा भारत पहल के जरिए इस विजन को जमीनी हकीकत में बदला गया है।
2: मेरा युवा भारत संगठन यानी माय भारत, भारत सरकार की एक युवा केंद्रित पहल है जिसे 31 अक्टूबर 2023 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ना और उन्हें विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के अवसर उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मेरा युवा भारत संगठन 21वीं सदी में राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा।
3: मेरा युवा भारत संगठन यानी माय भारत की नींव रखी गई है। 21वीं सदी में राष्ट्र निर्माण के लिए मेरा युवा भारत संगठन बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है।
2: छत्तीसगढ़ में माय भारत की गतिविधियों ने युवा शक्ति की व्यापक सहभागिता को नई दिशा दी है। माय भारत संगठन के छत्तीसगढ़ में राज्य निदेशक अर्पित तिवारी ने बताया कि इस संगठन के माध्यम से छत्तीसगढ़ के युवा राष्ट्रीय पटल पर अपना परचम लहरा रहे हैं।
4: छत्तीसगढ़ में भी माय भारत बहुत ही वृहद स्तर पे कार्य कर रहा है। हमारा आज बस्तर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा का युवा राष्ट्रीय पटल पे अपना परचम लहरा रहा है। वहीं ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के माध्यम से क्रॉस कल्चरल लर्निंग हो रही है, जिसमें भारत के कोने कोने में ट्राइबल क्षेत्र के हमारे युवा जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ का परचम लहरा रहे हैं।
2: मेरा युवा भारत संगठन का लक्ष्य युवाओं में नेतृत्व क्षमता, जिम्मेदारी और नागरिक भावना विकसित करना तथा उन्हें विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदार बनाना है। मेरा युवा भारत युवाओं को अवसर, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का एक सशक्त मंच है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दूसरे हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। इससे एक दिन पहले हुए हमले में 13 लोगों की मौत हुई थी और 308 लोग घायल हुए थे। यमन के हूती विद्रोहियों ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने विमानन कंपनियों और यात्रियों की सऊदी अरब के हवाई अड्डों का इस्तेमाल करने और उसके हवाई क्षेत्र से गुजरने के खिलाफ चेतावनी दी है। पूर्वी सऊदी अरब में तेल प्रतिष्ठानों और दम्माम हवाई अड्डे पर भी हमले किए हैं। इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हूती विद्रोहियों पर हमले करने को लेकर अमरीका जल्द फैसला लेगा। वहीं ब्रिटेन के रक्षा मंत्री विस स्ट्रीटिंग ने संकेत दिया है कि ब्रिटेन सऊदी अरब को और सहायता दे सकता है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: जालिम लोशन,
6: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन।
5: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
7: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका स्वागत है। सऊदी अरब के रियाद स्थित किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को हुए हमले में घायल एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है और पार्थिव शरीर जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता देने की बात कही है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि रियाद स्थित भारतीय दूतावास हमले के बाद सभी जरूरी कदम उठा रहा है। दूतावास के अनुसार 3 भारतीय आईसीयू में है, लेकिन उनकी हालत स्थिर है। भारतीय नागरिक सहायता के लिए सऊदी अरब में 24 घंटे उपलब्ध टोल फ्री नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 800-2-47-1234। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में मार्शल द्वीप के झंडे वाले टैंकर एमटी वाल्थेरा

0: पर हुए हमले में सभी 11 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। श्री सोनोवाल ने बताया कि ओमान के सोहार एंकरीज में भारतीय नाविकों को ले जा रहे टैंकर एमटी पेट्रो डॉल्फिन पर ड्रोन से हमला किया गया। जहाज पर सवार 11 भारतीयों में से 9 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 2 लापता हैं। स्थानीय तटरक्षक बल लापता भारतीयों की तलाश में जुटा है। सरकार संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है और बचाव अभियान में हर संभव सहायता दी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने को लेकर सहमति बनी है, हालांकि उन्होंने इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी है। श्री ट्रंप ने कल रात सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये संघर्ष विराम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस पर रूस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने ट्रंप की घोषणा का स्वागत किया है। जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन रूस के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने के लिए तैयार है, हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप की घोषणा के बाद भी रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले किए। पूर्वी अफ्रीका में जिबूती के तट के पास प्रवासियों से भरी एक नाव पलटने से 15 बच्चों सहित 139 लोगों की मौत हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के अनुसार नाव में 305 लोग सवार थे।
1: प्रवासन संगठन ने बताया है कि मृतकों की आधिकारिक संख्या 139 है। हादसे के बाद 84 लोग अब भी लापता हैं। उनकी तलाश जारी है और मृतकों की संख्या बढ़ने की भी आशंका है। नाव में सवार 80 से अधिक लोगों को बचा लिया गया है। सभी जीवित बचे लोग इथियोपिया के नागरिक हैं। उन्हें उबाक स्थित IOM के बचाव केंद्र में ले जाया गया है, जहां उन्हें चिकित्सा सहायता दी जा रही है। यह नाव बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य से जिबूती से यमन जा रही थी। प्रवासन संगठन के अनुसार पिछले वर्ष ही इस मार्ग पर 900 से अधिक प्रवासियों की मौत हुई या वे लापता हैं। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार मिंटो रोड, मंडी हाउस का गोल चक्कर, गुरु नानक चौक, लोधी रोड फ्लाईओवर और अन्य मार्ग प्रभावित रहेंगे। वहीं दिल्ली मेट्रो ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से नई दिल्ली में 6 मेट्रो स्टेशनों पर आवाजाही आज शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। ये स्टेशन है पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय और बाराखंबा रोड। इन सभी मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे वस्तु और सेवा कर GST भारत के कर सुधारों में परिवर्तनकारी भूमिका विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के GST नीति प्रकोष्ठ के आयुक्त गौरव सिंह शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 01123104 8101 2317 1717। इंदौर में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली है। 224 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 209 रन ही बना सके। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
3: क्या हो गया ऐसा?
2: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
3: ये कमाल कैसे हो गया?
2: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
3: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
2: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान CP ग्राम्स की समाधान दीदी।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद फरहत। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवाओं को भारत में उपलब्ध असीम अवसरों का लाभ उठाने का संदेश सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, भारत के युवाओं के पास दुनिया का भविष्य तय करने की क्षमता। लोकशक्ति की खबर है, युवाओं से प्रधानमंत्री की अपील, बड़े सपने देखें, निडर बनकर नए विचारों पर काम करें। दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। जनसत्ता लिखता है, शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने वाले लोगों को अवैध रूप से हिरासत में न लिया जाए। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से फिर तबाही। उत्तरी गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में अचानक आई बाढ़, 5 लोग लापता, 45 से ज्यादा मकान और पुल बहे। हिंदुस्तान की खबर है, दैनिक जागरण ने भी विनाशकारी बाढ़ की तस्वीरें साझा की हैं। पत्र लिखता है, 2 पनबिजली परियोजनाओं को भी बाढ़ से नुकसान, 50 लोग बचाए गए। नवरात्रि के पहले दिन 3 लाख से अधिक भक्त पहुंचे पावागढ़। गुजरात में महाकाली के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों की तस्वीरें

0: বাড়িতে থেকেই ডেঙ্গি থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়া সম্ভব। তবে বাড়াবাড়ি হলে, যেমন খুব দুর্বলতা, রোগী বসে বা দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না, একটুতে মাথা ঘুরছে, বারবার বমি হচ্ছে বা পেটের যন্ত্রণা, ছ ঘন্টারও বেশি সময় প্রস্রাব হয়নি, দেহের কোনো জায়গা থেকে নিজে থেকে রক্তপাত হলে বা চামড়ায় কালশিটে দেখা দিলে, জ্বরের মাত্রা খুব বেশি হলে, রোগী ঘরের মধ্যে রয়েছে বা শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, তবে দেরি না করে রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যান। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: अब यहाँहरू समक्ष चर्चा गरिरहेका छौँ सेवा संकल्प अभियान मेक इन इन्डिया। सेवा संकल्प अभियान समाजमा सेवा, सहयोग, सद्भावना र मानवताको भावना विकास गर्ने एउटा महत्वपूर्ण अभियान हो। यस अभियानको मुख्य उद्देश्य मानिसहरूलाई निस्वार्थ भावनाले समाज र राष्ट्रको सेवा गर्न प्रेरित गर्नु हो। सेवा नै मानवताको सबैभन्दा ठूलो धर्म हो भन्ने सन्देश यस अभियानले दिन्छ। यस अभियान अन्तर्गत गरीब, असहाय, वृद्धा भएका व्यक्ति तथा आवश्यकतामा परेका मानिसहरूलाई सहयोग गर्न सकिन्छ। सरसफाई अभियान सञ्चालन गर्ने, वृक्षारोपण गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना फैलाउने तथा बेपत्ता भएका मानिसहरूलाई सहयोग गर्ने जस्ता कार्यहरू यस अभियानका महत्वपूर्ण पक्षहरू हुन्। सेवा संकल्प अभियानले युवाहरूमा सामाजिक दायित्व, अनुशासन, सहकार्य र नेतृत्व क्षमताको विकास गर्न मद्दत गर्छ। यसले समाजमा एकता, समानता र भाइचाराको भावना बढाउँछ। प्रत्येक नागरिकले आफ्नो क्षमता र समयअनुसार समाजको सेवामा योगदान दिन सकेमा समाजलाई अझ राम्रो बनाउन सकिन्छ। सेवा संकल्प अभियान केवल एउटा अभियान मात्र नभई समाज परिवर्तन गर्ने सकारात्मक सोच पनि हो। हामी सबैले सेवा भावलाई आफ्नो जीवनको हिस्सा बनाएर असल समाज र समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा योगदान दिन सकिन्छ। यसैसित जोडिएको छ मेक इन इन्डिया। मेक इन इन्डिया भारत सरकारद्वारा सन् 2014 साल सेप्टेम्बर 25 सुरु गरेको एउटा महत्वपूर्ण अभियान हो। यस अभियानको मुख्य उद्देश्य भारतलाई उत्पादन तथा उद्योगको प्रमुख केन्द्र बनाउनु र देशभित्रै वस्तुहरूको उत्पादन बढाउनु हो। यस अभियानले स्वदेशी उत्पादन, औद्योगिक विकास र आत्मनिर्भर भारतको निर्माणमा जोड़ दिन्छ। मेक इन इन्डिया अभियान अन्तर्गत भारतीय तथा विदेशी कम्पनीहरूलाई भारतमै उद्योग स्थापना गर्न र वस्तुहरू उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरिन्छ। यसबाट नयाँ उद्योगहरूको स्थापना हुन्छ, रोजगारीका अवसरहरू बढ्छन् र देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्छ। मेक इन इन्डिया भारत

0: इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें।

0: बेहतर समाधान देने की क्षमता है। चेन्नई में जयगोपाल गरुड़िया हिंदू विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह में श्री मोदी ने कहा कि दुनिया आज नई चुनौतियों के समाधान खोज रही है और उन्हें पूरा विश्वास है कि भारत के युवा इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं।
1: विकसित भारत के लिए जो नए आइडियाज चाहिए, जो नए सॉल्यूशंस चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा। टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस एंड यू हैव द पोटेंशियल टू प्रोवाइड दिस दोज सॉल्यूशंस।
0: दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुर्गा ई ऑटो योजना शुरू करने जा रही है। दुर्गा यानी ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर विमेन एंड ट्रांसजेंडर। योजना

0: उद्देश्य महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। दिल्ली मेट्रो ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से नई दिल्ली में 6 मेट्रो स्टेशनों पर आवाजाही आज शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। ये स्टेशन है पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय और बाराखंभा रोड। इन स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार मिंटो रोड, मंडी हाउस का गोल चक्कर, गुरु नानक चौक, लोधी रोड फ्लाईओवर और अन्य मार्ग प्रभावित रहेंगे। पुलिस ने कहा है कि लोग प्रभावित इलाकों में अनावश्यक यात्रा करने से बचें। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दूसरे हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। इससे एक दिन पहले हुए हमले में 13 लोगों की मौत हुई थी और 308 घायल हुए थे। हमले में घायल एक भारतीय नागरिक की भी मौत हो गई है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है और पार्थिव शरीर जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता देने की बात कही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि रियाद स्थित भारतीय दूतावास हमले के बाद सभी जरूरी कदम उठा रहा है। दक्षिण कोरिया ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने आज सुबह अपने पूर्वी समुद्री क्षेत्र की ओर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इस कदम से क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने बताया कि ये मिसाइलें उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के आसपास के इलाके से दागी गई। जापान के रक्षा मंत्रालय ने कम से कम 2 मिसाइलों का पता लगाया है। मंत्रालय के अनुसार ये मिसाइलें जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर समुद्र में गिरी। घरेलू कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में कोयले का भंडार पिछले महीने की 29 तारीख से 1,80,00,000 टन से ऊपर स्थिर बना हुआ है। कोयला मंत्रालय ने बताया कि 10 अक्टूबर को कोयले का भंडार 1,82,00,000 टन से अधिक था। मंत्रालय ने कहा कि स्थिरता बिजली संयंत्रों की दैनिक खपत के अनुरूप कोयले की आपूर्ति को दर्शाती है। जिन संयंत्रों में कोयले का भंडार कम है उनकी आपूर्ति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मंत्रालय ने कहा कि पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने और निर्बाध बिजली उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील बिजली स्टेशनों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार कोयले का पुनर्वितरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवरात्र के दूसरे दिन देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर एक संदेश में उन्होंने कहा कि नवरात्र का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा को समर्पित है। माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या, त्याग और संकल्प के प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री ने कामना की कि माँ ब्रह्मचारिणी सभी को साहस और आत्मसंयम का आशीर्वाद दें। इंदौर में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली है। 224 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 209 रन ही बना सकी। श्रृंखला का चौथा मैच 14 अक्टूबर को हैदराबाद में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हामी आकाशवाणीको खरसाङ केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। रब सुनौ मासरी।

0: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
1: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
2: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए। एक Why आपको फ्रॉड से बचाए।
0: हमेशा पूछो WHY। Why कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
2: आपका साइबर रक्षक।

0: सर 5,000 रुपए लगाइए और 8,000 रुपए प्रॉफिट पाइए। ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
1: वाओ,
2: स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
3: हमेशा पूछो WHY, why? कहता है कैप्टन वाई ऑफ SBI,
2: आपका साइबर रक्षक।

0: हामी आकाशवाणीको खरसाङ केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। रबको केही क्षणमा आकाशवाणी दिल्ली केन्द्रको समाचार सम्प्रसारण गरी सुनिरहेका छौं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को दखल देना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक की गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे बड़े वायदे किए हैं।
2: हमारे संविधान ने हर नागरिक को सम्मान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। आयोग इन अधिकारों की रक्षा करता है। ये उन लोगों की आवाज बनता है जो अपनी बात आसानी से नहीं रख पाते। आयोग शिकायत मिलने का इंतजार किए बिना भी खुद कार्रवाई कर सकता है।
1: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि मानवाधिकारों का सीधा संबंध मानवीय गरिमा से है और इनमें स्वास्थ्य सेवा, भोजन, आवास, आजीविका और स्वच्छ पर्यावरण तक पहुंच शामिल है। उन्होंने बताया कि आयोग ने पिछले 33 वर्ष में 24 लाख से अधिक मामले दर्ज किए और 23 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं।
3: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पटीशन, किसी भी, कोई भी, चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का, कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है, वो हमारे पास आए। हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप जो उनकी समस्या है उसका हम अपनी तरफ से उसकी सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
1: इंडिया ब्लॉक की मुलाकात की मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल ही मिलने के लिए एक चिट्ठी मिली थी और उन्होंने कल रात ही इसका जवाब दे दिया था। उनसे न मिलने की वजह भी बता दी गई थी।

दिल्ली मेट्रो ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से नई दिल्ली में 6 मेट्रो स्टेशनों पर आवाजाही आज शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। ये स्टेशन हैं पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय और 12 खंभा रोड। इन स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार मिंटो रोड, मंडी हाउस का गोल चक्कर, गुरु नानक चौक, लोधी रोड फ्लाईओवर और अन्य मार्ग प्रभावित रहेंगे। पुलिस ने कहा है कि लोग प्रभावित इलाकों से अनावश्यक यात्रा करने से बचें। दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुर्गा ई ऑटो योजना शुरू करने जा रही है। दुर्गा यानी ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर विमेन एंड ट्रांसजेंडर। योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। घरेलू कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में कोयले का भंडार पिछले महीने की 29 तारीख से 1,80,00,000 टन से ऊपर स्थिर बना हुआ है। कोयला मंत्रालय ने बताया कि 10 अक्टूबर को कोयले का भंडार 1,82,00,000 टन से अधिक था। मंत्रालय ने कहा कि स्थिरता बिजली संयंत्रों की दैनिक खपत के अनुरूप कोयले की आपूर्ति को दर्शाती है। जिन संयंत्रों में कोयले का भंडार कम है उनकी आपूर्ति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित तीसरी पनडुब्बी रोधी वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट मांगरोल को आज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये कार्यक्रम मुंबई स्थित नौसैनिक शिपयार्ड में आयोजित किया गया। ये एक सुरंग रोधी जहाज था। 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ निर्मित मांगरोल युद्धपोत डिजाइन, निर्माण और उन्नत हथियारों तथा सेंसरों के एकीकरण में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवरात्र के दूसरे दिन देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर एक संदेश में उन्होंने कहा कि नवरात्र का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा को समर्पित है। मां ब्रह्मचारिणी तपस्या, त्याग और संकल्प की प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री ने कामना की कि मां ब्रह्मचारिणी सभी को साहस और आत्मसंयम का आशीर्वाद दें। घरेलू शेयर बाजार आज सुबह 0.5% से अधिक की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 561 अंक गिरकर 71,911 पर, जबकि निफ्टी 149 अंक गिरकर 22,372 पर पहुंच गया। इंदौर में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का चौथा मैच 14 अक्टूबर को हैदराबाद में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोता, कार्यक्रमको अघिल्लो प्रस्तुति अब स्वीकार्नुहोस् एक टोयलेट प्रेम कथा फिल्मबाट सोनु निगम अनि श्रेय घोषालको स्वरमा यहाँकै रोजाइमा। इन्द्रप्रसादन रुदी जिल्ला छत्तिसगढबाट चन्द्रकान्त सीमा साहु, सूर्यकान्त राकेश साहु, शुभम सिखानी सफाली, यसरी नै रामपुर चोक बिहारबाट जासिम राही, सवाना सहिन, प्रवीण तमना बेगम, रकिब आलम, कमरान फरन आलम, सञ्जय कुमार कर्ण अनि अब्रार आलम, जतुका किशनपुरबाट आलम दिलकश, शवाना नाच, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शवाना आलम, नाच प्रवीण अनि चाँदनी नाच, पुस्तकल रोड फारबिसगंज बिहारबाट शम्भु प्रसाद गुप्त, कुन्ती देवी, प्रेम कुमार, कृष्ण कुमार, नन्दकिशोर गुप्ता अनि पञ्चनन्द दास, दलोटोला फारबिसगंज बिहारबाट सिरज परवाना, राजा सौरभ, तर्मनोम तप्सुम अनि इतिहार, न्यू चम्टा चिया बगान गिर्जालाइनबाट त्वर्कत रुस एका, स्वर्णलता, श्रद्धा, अनिरुद्ध, डोमियन, जुलियन अनि चार्ल्स एका, साथै झौगडी बस्तीबाट विमल खगडिया, मीना खगडिया, सुचिता सानिया अनि निलु खगडिया, लालमाता सुदमनगर रत्लाई जिल्लाबाट हर्षिता, रामेश्वर, काना सफलता, कपिल मीनाक्षी, सत्यनारायण, मनोहर बाई। त आउनुहोस् यहाँकै रोजाइमा स्वीकार्नुहोस् कार्यक्रमको यो अघिल्लो प्रस्तुति।

0: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता भारतीय नौसेना ने तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में खतरों से निपटने के लिए पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इंडिया ब्लॉक के साथ बैठक के अनुरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वार हर भारतीय नागरिक के लिए खुले सर्वोच्च न्यायालय तक विपक्षी दलों के विरोध मार्च के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार शाम 4 बजे तक बंद दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों के लिए 3 नए स्थल निर्धारित किए जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाया और दिल्ली हरियाणा पंजाब तथा छत्तीसगढ़ में कल तक आंधी तूफान के साथ बिजली चमकने का पूर्वानुमान अब समाचार विस्तार से भारतीय नौसेना ने आज मुंबई स्थित नौसैनिक शिपयार्ड में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित तीसरी पनडुब्बी रोधी वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट आईएनएस मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया स्वदेशी तकनीक से निर्मित इस युद्धपोत के नौसेना में शामिल होने से तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में पनडुब्बियों का पता लगाने और उनसे निपटने में नौसेना को मजबूती मिलेगी नौसेना के पश्चिमी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन की अध्यक्षता में कमिश्निंग समारोह आयोजित किया गया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री से निर्मित यह युद्धपोत भारत की इंजीनियरिंग क्षमता तकनीकी प्रगति और राष्ट्रीय संकल्प को दर्शाता है ब्यौरा हमारे संवाददाता से
1: तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में पानी के भीतर मौजूद खतरों का पता लगाने और उनसे निपटने के लिए डिजाइन किया गया आईएनएस मंगरूल आधुनिक हथियारों और सेंसरों से लैस है इनमें अभय हल माउंटेड सोनार हल्के टॉर्पीडो स्वदेशी पनडुब्बी रोधी रॉकेट लॉन्चर और मारीच उन्नत टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम शामिल है वाटर जेट प्रोपल्शन वाले 3 डीजल इंजनों से संचालित यह पोत उथले पानी में तेजी से दिशा बदलने में सक्षम है यह पानी के भीतर निगरानी कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों और वॉरफेयर से जुड़े अभियानों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है मंगरूल समुद्री गश्ती विमानों हेलीकॉप्टरों और अन्य युद्धपोतों के साथ मिलकर पनडुब्बी से जुड़े खतरों का पता लगाने और उनसे निपटने में पूरी तरह सक्षम है प्रार्थना आकाशवाणी समाचार मुंबई
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार पिछले कुछ वर्षों से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है इसमें हथियारों और तकनीक से लेकर वर्दी उपकरण और प्रशिक्षण तक सभी क्षेत्र शामिल हैं नई दिल्ली में आज भारतीय सेना और भारतीय खाद्य निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत अब अपनी रक्षा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा देश में ही तैयार कर रहा है
2: आज आर्मी और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक पार्टनरशिप एमयू की साइनिंग भी और नेशनल सिक्योरिटी को इन्हांस करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है मॉडर्न वॉरफेयर में केवल वेपन्स प्लेटफॉर्म्स और टेक्नोलॉजी ही महत्वपूर्ण नहीं है आज के युद्ध केवल फ्रंट लाइन पर नहीं जीते जाते युद्ध के पीछे सप्लाई चेन की मजबूती स्टोरेज की क्षमता ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर

0: अधिकारों की रक्षा करता है। ये उन लोगों की आवाज़ बनता है जो अपनी बात आसानी से नहीं रख पाते। आयोग शिकायत मिलने का इंतजार किए बिना भी खुद कार्रवाई कर सकता है।
1: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं।
2: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पिटीशन किसी भी चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का, कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है, वो हमारे पास आए, हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
1: इंडिया ब्लॉक की मुलाकात की मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल ही मिलने के लिए एक चिट्ठी मिली थी और उन्होंने कल रात ही इसका जवाब दे दिया था। उनसे न मिलने की वजह भी बता दी गई थी। दिल्ली में विपक्षी दलों के आज दोपहर में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए यातायात पुलिस ने परामर्श जारी किया है। प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास शाम 4 बजे तक बंद रहेगा। यातायात पुलिस ने प्रभावित मार्गों पर अनावश्यक यात्रा से बचने, डायवर्जन के संकेतों और यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन के लिए 3 नए स्थान निर्धारित किए हैं। इनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का सीबीडी मैदान शामिल है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने नागरिकों के विरोध प्रदर्शन और धरना आयोजित करने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त वैकल्पिक स्थानों की पहचान के लिए एक समिति गठित की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का फैसला किया गया है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगा। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री गांधी ने कहा कि उन्होंने और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर चुनावों की निष्पक्षता को लेकर चिंता जताई है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने आज नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू की छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी मणिपुर से कांग्रेस सांसद डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भाजपा का दावा है कि 11 छात्राओं की शिकायतों की जांच के बाद विश्वविद्यालय ने अंगोमचा को उनके पद से हटा दिया था। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की कथित चुप्पी की आलोचना की।
3: स्मैश द पेट्रियार्की का हवाला देने वाले श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस के बाकी शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल चुप्पी साधे हुए। मैं पूछना चाहती हूँ राहुल गांधी जी से, क्या आप अपने इस मौन से बिमल अकोइजम जो आपके सिटिंग सांसद हैं, उनके सेक्सुअल मिसकंडक्ट को कंडोन करते हैं? अगर स्मैश द पेट्रियार्की आपके लिए केवल एक चुनावी जुमला नहीं है तो बिमल अकोइजम जो आपके सिटिंग सांसद हैं उनके खिलाफ एक्शन लेके दिखाइए।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि परस्पर जुड़ी इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग केवल कूटनीतिक विकल्प नहीं है, बल्कि ये दुनिया की शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए रणनीतिक आवश्यकता है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में श्री राधा कृष्णन ने कहा कि वैश्विक सहयोग का मूल मंत्र साझा हितों को पहचानना, उनका सम्मान करना और उन्हें सामूहिक कार्रवाई में बदलना है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसी वैश्विक समस्याओं से निपटने के लिए सामूहिक प्रतिक्रिया की जरूरत है।
4: I welcome our distinguished participants from friendly foreign countries. This diverse composition provides a unique opportunity for cross-national learning. That is the great importance of this course. Exchange of cross-sectorial perspectives and deeper understanding of national security and strategic issues.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पहल से लोगों के जीवन में आए बदलाव के बारे में जानकारी दी जा रही है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय

0: योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। वर्ष 2015 से दुनिया भर में यह दिवस मनाया जा रहा है। इससे योग को वैश्विक पहचान मिली और शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति तथा संतुलित जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ी है।
1: योग से हमें वो आत्मविश्वास और मनोबल भी मिलता है जिससे हम संकटों से जूझ सकें और जीत सकें। योग से हमें शांति मिलती है, मानसिक शांति मिलती है, संयम और सहन शक्ति भी मिलती है।
0: केंद्र सरकार का आयुष मंत्रालय और विभिन्न संस्थान योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम, सामूहिक योग अभ्यास और प्रशिक्षण गतिविधियां आयोजित करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड का योग और अध्यात्म से गहरा संबंध है। ऋषिकेश विश्व भर में योग और अध्ययन के प्रमुख केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। हिमालय और गंगा की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि देश विदेश के लोगों को यहां आकर्षित करती है। इसी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने योग नीति 2025 लागू की है। इसका उद्देश्य उत्तराखंड को योग और वेलनेस के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में विकसित करना है। राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 5 नए योग केंद्र विकसित करने का लक्ष्य भी रखा है। इन प्रयासों से योग पर्यटन को बढ़ावा देने, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने, उत्तराखंड की योग परंपरा और वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में काम किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का संदेश है कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन का माध्यम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल और उत्तराखंड की समृद्ध योग परंपरा इस संदेश को दुनिया भर में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
2: घरेलू कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में कोयले का भंडार पिछले महीने की 29 तारीख से 1,80,00,000 टन से ऊपर स्थिर बना हुआ है। कोयला मंत्रालय ने बताया कि 10 अक्टूबर को कोयले का भंडार 1,82,00,000 टन से अधिक था। जिन संयंत्रों में कोयले का भंडार कम है उनकी आपूर्ति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को एक बार फिर हमला किया गया। सऊदी अरब के नागरिक उड्डयन सामान्य प्राधिकरण के अनुसार घायलों की स्थिति और हमले में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इससे एक दिन पहले शनिवार को भी हवाई अड्डे पर हमला हुआ था। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि शनिवार को किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में घायल 11 भारतीय नागरिकों में से एक की मौत हो गई है। पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी भारतीय नागरिक की मौत पर दुख जताया। पाकिस्तान में संघीय सरकार द्वारा आपातकाल लागू करने और जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के नेतृत्व वाली प्रांतीय सरकार को निलंबित करने के बाद खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हिंसा बढ़ गई है। कई इलाकों में पुलिस की गोलीबारी और आंसू गैस के गोले दागे जाने की खबरें हैं। केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में कल वहां प्रदर्शन हुए। भारतीय शेयर बाजार में सितंबर माह के अंत तक म्यूचुअल फंड द्वारा 38,306 करोड़ रुपए का निवेश किया गया, जो पिछले माह की तुलना में 31% अधिक है। गोल्ड एक्सचेंज फंड में पिछले महीने की तुलना में 71.4% जबरदस्त तेजी देखी गई, जो 4,451 तक पहुंच गया। घरेलू शेयर बाजार दोपहर में गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। शेयर 617 अंक गिरकर 71,855 पर आ गया, जबकि निफ्टी 158 अंक गिरकर 22,363 पर था। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक बिजली चमकने के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिन में तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में भी ऐसी स्थिति रहने की उम्मीद है। आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। इस दिन तपस्या, त्याग और संकल्प की प्रतीक मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कामना की कि मां ब्रह्मचारिणी सभी को साहस और आत्मसंयम का आशीर्वाद दें। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे वस्तु और सेवा कर GST भारत के कर सुधारों में परिवर्तनकारी भूमिका विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के GST नीति प्रकोष्ठ के आयुक्त गौरव सिंह शामिल होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय नौसेना ने तटीय उथले समुद्री क्षेत्रों में खतरों से निपटने के लिए पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इंडिया ब्लॉक

के साथ बैठक अनुरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वार हर भारतीय नागरिक के लिए खुले। सर्वोच्च न्यायालय तक विपक्षी दलों के विरोध मार्च के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई। दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार शाम 4 बजे तक बंद। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों के लिए 3 नए स्थल निर्धारित किए। जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: रुपए लगाइए और 8000 रुपए प्रॉफिट पाइए, ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
2: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है, इसलिए
3: हमेशा पूछो WHY, Y कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
2: आपका साइबर रक्षक।

समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। नई दिल्ली में आज दिल्ली संवाद 2026 को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत में युवाओं की संख्या अधिक है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था

0: ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। उन्होंने कहा कि युवाओं की ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और दृढ़ संकल्प उन्हें केवल भारत की विकास यात्रा का उत्तराधिकारी ही नहीं बल्कि इसका निर्माता भी बनाते हैं। युवा देश को अधिक समृद्ध भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई स्थित नौसैनिक शिपयार्ड में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित तीसरी पनडुब्बी रोधी वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट INS मंगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। स्वदेशी तकनीक से निर्मित इस युद्धपोत के नौसेना में शामिल होने से तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में पनडुब्बियों का पता लगाने और उनसे निपटने में नौसेना को मजबूती मिलेगी। नौसेना के पश्चिमी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन की अध्यक्षता में कमिश्निंग समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री से निर्मित ये युद्धपोत भारत की इंजीनियरिंग क्षमता, तकनीकी प्रगति और राष्ट्रीय संकल्प को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार पिछले कुछ वर्षों से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। नई दिल्ली में आज भारतीय सेना और भारतीय खाद्य निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारत अब अपनी रक्षा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा देश में ही तैयार कर रहा है।
1: आज आर्मी और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बीच स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक पार्टनरशिप MOU की साइनिंग भी और नेशनल सिक्योरिटी को इन्हांस करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। आज के युद्ध केवल फ्रंट लाइन पर नहीं जीते जाते, युद्ध के पीछे सप्लाई चेन की मजबूती, स्टोरेज की क्षमता, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और टाइमली रिप्लेसमेंट की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान में हाल ही में संपन्न एशियाई खेलों में 27 पदक जीतने वाले तीनों सेनाओं के खिलाड़ियों को आज सम्मानित किया। इन खिलाड़ियों ने 6 स्वर्ण, 11 रजत और 10 कांस्य पदक जीते। उनके प्रदर्शन से भारत को कुल 85 पदक जीतने और पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान मिला। इस अवसर पर श्री सिंह ने खिलाड़ियों के अनुशासन, कड़ी मेहनत और टीम भावना की सराहना की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आज नई दिल्ली में अपना 33वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर उभरती वैश्विक और तकनीकी चुनौतियों के बीच मानवाधिकारों की रक्षा की मजबूती पर बल दिया गया। 12 अक्टूबर 1993 को स्थापित आयोग देश भर में मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम कर रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को दखल देना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक से गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे बड़े वादे किए हैं।
2: हमारे संविधान ने हर नागरिक को सम्मान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। आयोग इन अधिकारों की रक्षा करता है। ये उन लोगों की आवाज बनता है जो अपनी बात आसानी से नहीं रख पाते। आयोग शिकायत मिलने का इंतजार किए बिना भी खुद कार्रवाई कर सकता है।
0: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स थिएटर महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शेखावत ने कहा कि दुनिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, संघर्ष और अनिश्चितताओं के बीच संस्कृति संवाद बढ़ाने, विश्वास कायम करने और वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। इस दिन तपस्या, त्याग और संकल्प की प्रतीक मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: भर्खरै सुन्नुभयो तनुवेट्स मनो चलचित्रबाट मोहित चौहानको आवाजलाई। शब्द रहेको थियो राजशेखरको अनि सङ्गीत थियो केआर एसएनएको। हामी बोलिरहेछौँ आकाशवाणी खरसाङ केन्द्रबाट।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: अब सुनो श्रोता, गाउँले सभा।

0: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
1: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
2: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए। एक Why आपको फ्रॉड से बचाए।
0: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन Why of SBI,
2: आपका साइबर रक्षक।

0: अवकाश प्राप्त शिक्षक हुनुहुन्छ, जसमा उहाँले प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी सरकारको 12 साल कल्याणकारी योजनामा सामाजिक सशक्तिकरणतर्फ भारतको फर्को यस विषयमाथि चर्चा गर्नुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ।
1: हजुर, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु, यहाँहरूले मलाई निमन्त्रणा दिएर यो मौका दिनुभयो। यहाँ समस्त टिमलाई नै मेरो हार्दिक आभार छ।
0: धन्यवाद। त श्रोताले, हाम्रो यो जुन कार्यक्रम छ चर्चा चौतारी, हाम्रो युट्युब च्यानल आकाशवाणी न्युज कर्सियङ @AIR कर्सियङ, ट्विटर ह्यान्डल @AIR न्युज कर्सियङ अनि फेसबुक पेज आकाशवाणी न्युज नेपालीमा पनि सुन्न सक्नुहुनेछ अनि आफ्नो प्रतिक्रिया यहाँहरूले दिन सक्नुहुनेछ।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने ब्रिटेन के साथ आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करने का आग्रह किया। केंद्र सरकार महाराष्ट्र और कर्नाटक के गन्ना किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी। नई दिल्ली का जंतर मंतर अब विरोध प्रदर्शन का स्थल नहीं रहा। दिल्ली पुलिस ने 3 नए स्थल निर्धारित किए। वर्ष 2026 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के अर्थशास्त्री रॉबर्ट टी हॉल और माइकल वुडफोर्ड को, और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक तेज हवाओं के साथ तूफान का अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापारिक समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने समझौते से विस्तारित व्यापार को निवेश, साझेदारी और रोजगार सृजन में बदलने का आह्वान किया। श्री गोयल ने कहा कि समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है। यह अधिकांश भारतीय निर्यातों के लिए ब्रिटेन के बाजार में बिना शुल्क के पहुंच प्रदान करता है, साथ ही ब्रिटेन के निर्यातकों के लिए सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर खोलता है। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित दिल्ली संवाद 2026 में कहा कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का भी उल्लेख किया। श्री गोयल ने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत में युवाओं की संख्या अधिक है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की हो जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि संबंध में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
3: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के जरिए लागू नियामक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने के साथ साथ उचित उपाय करने का भी आह्वान किया है, ताकि स्वास्थ्य सेवा शुल्क संबंधी जानकारी रोगियों और उनके परिजनों के लिए स्पष्ट और आसानी से सुलभ हो। पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे अंतर्राष्ट्रीय को सोच समझ कर निर्णय लेने में मदद मिलेगी, कीमतों और बिलिंग संबंधी शिकायतों को कम करने में सहायता मिलेगी और चिकित्सा एवं आयुष देखभाल के लिए एक विश्वसनीय गंतव्य के रूप में भारत की स्थिति और मजबूत होगी। यह पहल स्वास्थ्य सेवा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और रोगियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: केंद्र सरकार ने कैंसर रोधी दवाओं पर लाभ को अधिकतम खुदरा

0: मूल्य के 30% तक सीमित करने का निर्णय लिया है। केंद्र ने आज सर्वोच्च न्यायालय को इसकी जानकारी दी। न्यायालय ने दवा क्षेत्र में दवाओं की कीमतों की व्यापक समीक्षा करने का निर्देश दिया था। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायाधीश विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ को बताया कि सरकार उन कैंसर दवाओं की सूची को अधिसूचित करेगी जिन पर लाभ की सीमा लागू होगी। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। सरकार ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के गन्ना किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए एक सप्ताह के भीतर एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। आज नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया। समिति गन्ने की कटाई के समय वैज्ञानिक रिकवरी मापदंडों, आधुनिक प्रयोगशाला परीक्षण प्रणालियों और वजन की सटीकता से संबंधित हर तकनीकी पहलू की बारीकी से जांच करेगी। समिति निर्धारित समय सीमा के भीतर सरकार को अपनी सिफारिशें देगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन के लिए 3 नए स्थान निर्धारित किए हैं। इनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का सीबीडी मैदान शामिल हैं। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से अब हटा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने नागरिकों के विरोध प्रदर्शन और धरना आयोजित करने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त वैकल्पिक स्थानों की पहचान के लिए एक समिति गठित की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का फैसला लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि तीनों नए निर्धारित स्थलों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की जाएंगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। इंडिया ब्लॉक की मीटिंग की मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल ही मिलने के लिए एक चिट्ठी मिली थी। उन्होंने कहा कि कल रात ही इसका जवाब दे दिया गया था और उनसे न मिलने की वजह भी बता दी गई थी।
2: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पटीशन, किसी भी, कोई भी, चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का, कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है, वो हमारे पास आए, हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और देश की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ आरोप लगाने के बजाय उनके समर्थन में सबूत पेश करने चाहिए।
3: 99 चुनाव हारने तक राहुल गांधी जी हर सीजन में ये देखते हैं कि किसके ऊपर आरोप लगाना है। कभी इलेक्शन कमीशन, कभी ईवीएम, कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो कभी कुछ और। और अब तो हालत ये हो गई है कि सड़क छाप भाषा का प्रयोग और निराधार आरोप लगाने का काम श्रीमान राहुल गांधी जी कर रहे हैं। राहुल जी, देश को शोर नहीं सच चाहिए, आरोप नहीं प्रमाण चाहिए। आप महामहिम राष्ट्रपति जी के पास गए, वहां पर भी आपको कहा गया कि शिकायत के साथ सबूत दीजिए, तो चुप्पी साध ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि एफडीआई नीति के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया गया है।
4: भारत की प्रत्यक्ष

0: विदेशी निवेश नीति में पिछले एक दशक के दौरान कई बड़े बदलाव किए गए हैं। केंद्र सरकार ने देश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई प्रमुख क्षेत्रों में निवेश के नियमों को आसान बनाया है। इनमें रक्षा, दूरसंचार, बीमा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्र शामिल हैं। रक्षा क्षेत्र में 74%, जबकि दूरसंचार, बीमा और अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% तक विदेशी निवेश की अनुमति है। वर्ष 2014 से 2025 के बीच भारत में 748 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। इसके साथ ही भारत में निवेश करने वाले देशों की संख्या भी 89 से बढ़कर 112 हो गई है। नई दिल्ली में इस साल रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज दुनिया के 100 से अधिक देश भारत में निवेश कर रहे हैं।
1: वर्ष 2014 से पहले के 10 वर्षों की तुलना में भारत में 2.5 गुना से अधिक FDI आया है और ज्यादा विदेशी निवेश का अर्थ है भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अनगिनत अवसर।
0: केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि भारत ने अंतरिक्ष, ड्रोन, रक्षा और बीमा सहित कई क्षेत्रों को विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए खोल दिया है।
2: सबसे पहले हम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, हमने विदेशी निवेश के लिए अंतरिक्ष, ड्रोन, रक्षा और बीमा जैसे क्षेत्रों को खोला है और प्रधानमंत्री ने परमाणु ऊर्जा उत्पादन को भी निजी क्षेत्र और विदेशी कंपनियों के लिए खोलने की बात कही है। और तीसरी बात, हम डीरेगुलेशन यानी नियमों में ढील की दिशा में काम कर रहे हैं, जिससे निवेश आसान हो जाएगा, चाहे वो घरेलू हो या फिर विदेशी।
0: केंद्र सरकार ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए नियमों को आसान बनाया है। इनका मकसद भारत को निवेश का एक प्रमुख वैश्विक केंद्र बनाना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद आज अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 2,10,00,000 से अधिक हो गई है। इनमें 506 ट्रांसजेंडर मतदाता भी शामिल हैं। अंतिम सूची में मतदाताओं की संख्या में 3.64% की वृद्धि हुई है। ये मतदाता आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली NCR में पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रतिबंध लगाने के बजाय जन जागरूकता और स्वैच्छिक भागीदारी का असर अधिक होगा। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि प्रतिबंधात्मक आदेशों को लागू करना जमीनी स्तर पर मुश्किल हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि न्यायालय धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC द्वारा आयोजित 11वीं, 12वीं और 13वीं सिविल सेवा परीक्षा, बाल विकास परियोजना अधिकारी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्तियां रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हो गई है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस साल अमेरिका के अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने नीति निर्माताओं को आर्थिक उछाल और मंदी के दौरान अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने में मदद करने वाले व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज ने कहा है कि उनके काम ने राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के सैद्धांतिक आधार को मजबूत किया। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिनों में तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकल, आंध्र प्रदेश, केरल और माहे में भी ऐसा ही मौसम रहने की उम्मीद है। मराठी की वरिष्ठ अभिनेत्री और लावणी कलाकार मधु कांबीकर का आज पुणे में 72 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार पुणे में किया गया। लक्षद्वीप को पूर्ण साक्षरता प्राप्त केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने इसकी घोषणा की।

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। आज हम बात करेंगे भारत की कर क्रांति वस्तु और सेवा कर जीएसटी की। साथियों, पहली जुलाई 2017 को वो तारीख थी जब भारत ने आजादी के बाद सबसे बड़ा कर सुधार देखा। रात 12 बजे संसद के केंद्रीय कक्ष से एक नारा गूंजा, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। जीएसटी से पहले देश में 17 तरह के अलग अलग टैक्स और 23 तरह के सेस लगते थे। हर राज्य की सीमा पर ट्रक घंटों खड़े रहते थे। जीएसटी ने उन सभी सीमाओं को मिटाकर पूरे भारत को एक बाजार बना दिया। तो क्या जीएसटी सच में आम आदमी, व्यापारी और अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है? क्या चुनौतियां अभी भी बाकी हैं? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आज के पब्लिक स्पीक कार्यक्रम का विषय है वस्तु और सेवा कर भारत की कर सुधारों में परिवर्तनकारी भूमिका। इस विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीबीआईसी यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड में वस्तु और सेवा कर नीति प्रभाग के आयुक्त गौरव सिंह। गौरव जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। स्टूडियो की फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के फोन नंबर 2331-0481-2371-7106 और 2331-4444 पर फोन कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस पर केवल संदेश भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindiAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो गौरव जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जीएसटी काउंसिल की 57वीं बैठक अभी हाल में हुई और उसमें बहुत सारे कर सुधार किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इन सुधारों पर अपनी प्रतिक्रिया दी और इनको बहुत बड़ा परिवर्तनकारी गेम चेंजर बताया।
1: जी, इस बार जो 57वीं काउंसिल पे हमारा फोकस था जीएसटी प्रोसेस रिफॉर्म्स पे।
0: जी,
1: 56वीं काउंसिल पे रेट पे फोकस था, 57वीं पे प्रोसेस रिफॉर्म्स पे, जो कि डे टू डे हर बार जैसे कि बिजनेस की लाइफ साइकिल में उसे रजिस्ट्रेशन, रिटर्न्स, रिफंड, लिटिगेशन, वो सब वो करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। तो वो सारी उसको सारे जो इश्यूज उसको आते हैं उसको हमने सॉल्व करने की कोशिश की है।
0: बहुत अच्छा।
1: इसमें
0: तो क्या क्या ऐसे सुधार रहे जिनसे इस जो बैठक थी इसमें क्या ऐसे निर्णय रहे जिससे कि आम व्यापारियों को, आम नागरिकों को लाभ हुआ?
1: जैसे मैं लाइफ साइकिल की बात करता हूं तो पहली चीज थी रजिस्ट्रेशन।
0: जी,
1: जब वो अप्लाई करता है तो अक्सर उसे बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, बहुत सवाल पूछे जाते हैं, उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है।
0: जी,
1: तो उसे हमने सरल किया। न सिर्फ उसके लिए अधिकारी के लिए एक इंस्ट्रक्शन इशू किए हैं पर हमने फॉर्म भी अपना चेंज किया।
0: जी,
1: फॉर्म में जो उसको डॉक्यूमेंट देने हैं वो फॉर्म में ही ड्रॉप डाउन से हमने कर दिए।
0: जी,
1: तो उससे ये हो जाएगा कि उसको पता है कि क्या देना है, क्या
0: आसान हो गया।
1: उसे हो गया कई चीज जहां पर वो सिस्टम रिस्क टू रेवेन्यू नहीं है कि वो रेवेन्यू को इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वहां हमने ऑटोमेट कर दिया है। वो खुद डिक्लेयर करेगा और वो खुद ही हमारा सिस्टम उसे एक्सेप्ट कर लेगा।
0: जी,
1: सो एक ट्रस्ट दी टैक्स पेयर का हमारा वो हमने एक शुरू किया है।
0: जी, इसके अलावा अलग अलग लोगों के लिए इस जो सुधार हुए हैं 57वीं परिषद में, इसमें क्या क्या ऐसे सुधार हुए जो अलग अलग लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं?
1: जैसे एक्सपोर्टर्स के लिए फॉर एग्जांपल।
0: जी,
1: एक्सपोर्टर्स को रिफंड अप्लाई करना पड़ता था, रिफंड अप्लाई करता है तो वो अधिकारी के पास जाता है, उसमें समय लगता है अधिकारी को। अब जो है आगे चल के हम रिफंड को ऑटोमेट कर देंगे। अगर वो लो रिस्क है, सिस्टम ने देखा रिस्क है, लो रिस्क है, तो उसको 100% रिफंड एक्सपोर्टर को तुरंत सिस्टम से मिल जाएगा।
0: वेरी गुड।
1: तो उससे बहुत जो अभी 60 दिन लगते थे वो होके 1-2 दिन में वो खत्म हो जाएगा।
0: बहुत बड़ी सुविधा।
1: बड़ी सुविधा। ऐसी कैश लेजर का रिफंड होता है, छोटा व्यापारी ईसीओ से सप्लाई करता है, ये जितने हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर से वो करता है, वो अपना रिफंड अप्लाई करेगा, तुरंत हाथों हाथ उसे रिफंड।

0: जाएगा और ये 1 नवंबर से ही हो जाएगा चालू
1: जी।
0: सो ऐसी कई चीजें हैं छोटे व्यापारी एक्सपोर्टर्स या जिसे हम कहते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की इनपुट का रेट ज्यादा है आउटपुट का कम है तो उसका रिफंड भी हमने ऑटोमेट कर दिया 90% रिफंड उसको अप्लाई करने के 10 दिन में शुरू में आगे चल के वो इमीडिएट जब सिस्टम रेडी हो जाएगा तो हाथों हाथ मिल जाएगा
1: बहुत बड़ी सुविधा
0: तो उससे बहुत आराम हो जाएगा व्यापारियों को।
1: और इसके अलावा कुछ सजा के प्रावधान हुआ करते थे टैक्स समय पे नहीं भर पाए या कुछ तो इस तरह से उनमें भी काफी कुछ परिवर्तन हुआ है
0: जी। अरेस्ट को बिल्कुल हटा दिया गया है जीएसटी से तो आगे चल के जब लॉ चेंज हो जाएगा तो कोई अरेस्ट जीएसटी में अधिकारी अरेस्ट नहीं कर पाएगा किसी को। दूसरा हमने प्रोसिक्यूशन जो कोर्ट में जहां हम अपील फाइल करते हैं किसी के अगेंस्ट वो करने को तो उसके भी हमने कई कानून जो जहां पर वो इंटरप्रिटेशन इश्यूज आ सकते हैं वो हमने हटा दिए हैं तो आगे चल के प्रोसिक्यूशन में आदमी को ये तकलीफ नहीं होगी गलत इंटरप्रिटेशन गलती हो गई और मुझे कोर्ट में उन्होंने वो कर दिया फौजदारी का मुकदमा कर दिया
1: वो तो मुकदमेबाजी से अब छूट मिल जाएगी जी। और हमारे श्रोता हमसे जुड़ने लगे हैं पहले श्रोता हरिद्वार से हैं रवि जवालिया। रवि जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है पूछिए क्या सवाल है आपका।
2: नमस्कार सर जी।
1: जी
2: विशेषज्ञ को भी नमस्कार
1: जी। नमस्कार
2: सबसे पहले मैं सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और आगामी सभी पर्व की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और अभी हाल ही में जो दिवंगत अभिनेता श्री नाना पाटेकर जी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जी।
1: रवि जी अपना सवाल पूछें।
2: हाँ जी मैं पूछना चाहता हूं सर अपनी बार जो 57वीं बैठक हुई इसमें क्या कर सुधार हुए हैं और सर मैं जानना चाहता हूँ कि अपनी बार अरेस्ट से किस किस सजा को हटा दिया गया है ये मेरा सवाल रहेगा सर।
0: अरेस्ट बिल्कुल ही खत्म कर दी गई है किसी भी ऑफेंस के लिए अरेस्ट का पावर नहीं रखी रही है जीएसटी में सो आगे चल के कोई भी ऐसा वो नहीं है ऑफेंस जिसपे आपको अरेस्ट जिसको किसी को अरेस्ट किया जा सके।
1: तो आमतौर पे ऐसा माना जाता था कि अगर समय पे कर नहीं चुकाया या कम कर चुकाया या और भी कोई हुई तो गिरफ्तारी की जो तलवार लटका करती थी वो पूरी तरह से समाप्त हो गई। गौरव जी आपसे जानना चाहेंगे 1 जुलाई 2017 से पहले भारत में जो कर प्रणाली थी
0: जी
1: कैसी थी और उससे जीएसटी ने उसको किस तरह से चेंज किया।
0: जीएसटी के आने से पहले 17 कुछ कर थे जो जीएसटी ने अपने में समेट लिए हैं उसमें एक व्यापारी को एक बिजनेसमैन को सेंट्रल एक्साइज का रजिस्ट्रेशन केंद्रीय उत्पाद कर का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था वो एक अलग उसको रिटर्न फाइल करना अलग कंप्लायंस था वैट का रजिस्ट्रेशन लेना था वैट का अलग कंप्लायंस था एक स्टेट में ही उसका दायरा था तो एक स्टेट में ही उसका क्रेडिट था और एक स्टेट में ही सब था। जब वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट कर भेजता था अपना सामान बेचता था तो उसे क्रेडिट नहीं मिलता था
1: जी।
0: तो जीएसटी ने क्या किया ये जो और अलग अलग टैक्स ऐसे ही करके कुछ 17 टैक्सेस में वो रजिस्टर्ड था जीएसटी ने वो खत्म करके एक टैक्स ले लिया है प्लस एक पूरा देश एक ही उसमें कर दिया तो वन नेशन वन टैक्स का अर्थ है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट कहीं भी वो देश में व्यापार करे तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी ये नहीं रहेगा कि मैं इस स्टेट में नहीं हूं
1: जी।
0: तो जीएसटी ने उसे हर स्टेट में एक उसको एक जैसा कर दिया उसके लिए पूरा देश उसके लिए एक मार्केट हो गया।
1: तो कुल मिला के वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट का जो जीएसटी का नारा था वो कितना सफल हो सका है।
0: काफी हो गए बहुत सफल हुआ है अगर आप देखिए जीएसटी में जब हम जीएसटी स्टार्ट हुआ था तो 66 लाख हमारे टैक्स पेयर्स थे करदाता थे अब वो 1,70,00,000 हो गए हैं 9 साल में
1: लगभग 3 गुना से भी अधिक हो गए
0: जी। तो जी। जो कितने नए व्यापार आए जो जीएसटी में आ गए कितने छोटे व्यापारी जो हो सकता है टर्नओवर जो हमारा थ्रेशोल्ड है 40 लाख और 20 लाख उससे नीचे है वो भी जीएसटी में आ रहे हैं क्योंकि जीएसटी का उन्हें फायदा दिख रहा है
1: लाभ मिल रहा है जी। और एक और श्रोता हमारे साथ हरियाणा के हिसार से जुड़ गए हैं राजेंद्र। राजेंद्र जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है क्या सवाल है आपका।
3: नमस्कार जी मुकेश जी और विशेषज्ञ नमस्कार
1: जी। जी सवाल पूछिए।
3: जो एक विकील शुक्ला जी उनके बारे में बता रहे थे तो उनका मैं भी उनके सुन के बड़ा अफसोस हुआ तो मैं उनको भगवान को उनको आत्मा में शांति दे। सवाल ये था जी जब जीएसटी की बैठक होने को होती है तो कभी काफी मार्केट में रेट जो सामान के वो बढ़ जाते हैं जैसे अभी कुछ दिन पहले बैठक होनी थी उसके बाद सामान के कुछ रेट बढ़ जाते थे इसके बारे में जीएसटी विभाग क्या करता है इसके बारे में जानना। नमस्कार।
0: देखिए जीएसटी विभाग तो रेट नहीं

0: डिसाइड करता है वो तो मार्केट डिसाइड करता है, पर ये स्पेकुलेशन की होता है कि लोगों ने अपने कि अंदेशा किया कि रेट घट सकता है या बढ़ सकता है तो लोग अपना वो कर देते हैं, परंतु इस पे जीएसटी विभाग कुछ नहीं वो कर सकता है। जीएसटी विभाग रेट्स डिसाइड नहीं करता, वो मार्केट करता है।
1: तो कुल मिला के जीएसटी डिपार्टमेंट की इसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, वो केवल मार्केट में ही होता है और दुकानदार या जो भी उत्पादक हैं वो अपना रेट बढ़ा देते हैं। गौरव जी आपसे जानना चाहेंगे, जीएसटी आने के बाद आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी में महंगाई पर क्या असर पड़ा है?
0: कि जीएसटी की खासतौर पर 56वीं काउंसिल जो पिछली काउंसिल हुई थी इससे पहले सितंबर 2025 में, उसमें हमने 4 से 2 रेट कर दिए, 5% और 18% का रेट रहा, 12% और 40% का रेट
1: समाप्त कर दिया।
0: सो रेट इसलिए किया गया, और फिर सरकार ने ये भी वो कोशिश की कि वो बेनिफिट जो है लाभ है वो ग्राहकों को पहुंचा जाए, कि व्यापारी खुद ना रख लें रेट कम का लाभ। वो जी गवर्नमेंट ने फॉलोअप किया, गवर्नमेंट ने कम कंज्यूमर हेल्पलाइन भी बनाई कि व्यापारी कि ग्राहक अपनी समस्या बता सकें कि रेट कोई पास ऑन नहीं कर रहा है। सो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से इंश्योर किया कि जब भी रेट कट हो रहा है वो रेट कट ट्रांसफर होता है कस्टमर को।
1: जी बिल्कुल। और एक और चीज यहां पर आ रही थी कि जीएसटी का लाभ जो पिछली 56वीं काउंसिल में जो हुआ था, बहुत सारे लोगों को लाभ हुआ, कितने लोगों ने खरीदारी की कारों पर और दूसरे वाहनों पर, इसके अलावा टीवी फ्रिज इन सब पे कितनी सारी फायदा हुआ था।
0: जी अगर आप देखिए हमारा रेवेन्यू, हमने रेट कम किया पर हमारा रेवेन्यू बढ़ गया। अब हमारा ऐसा रेवेन्यू आ गया कि हम 2 लाख करोड़ से कम आता है तो हमें महीने का तो लगता है कि कम आया इस बार रेवेन्यू। तो क्या हुआ है, रेट कम होने से लोगों की खरीदारी बढ़ गई जिसकी वजह से रेवेन्यू
1: परचेज पावर बढ़ी, उससे रेवेन्यू बढ़ा। जी बिल्कुल। और इसके अलावा एक और चीज जानना चाहेंगे कि बहुत सारे जब 56वीं काउंसिल की बैठक हुई थी, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे थे जिन पर जीएसटी बिल्कुल जीरो कर दिया गया, वो ऐसा ये किस तरह के प्रोडक्ट्स थे जिन पे
0: जनरली फूड आइटम्स थे जो कि खाने पीने की लोगों की वो चीजें थी, उसको उस पे 5 से 0 कर दिया गया रेट। दवाइयों पे लाइफ सेविंग मेडिसिन जो है जीवन रक्षक दवाइयां हैं उन पे हमने 5 से 0 काउंसिल के रिकमेंडेशन से 5 से 0 हुआ ताकि लोगों को फायदा हो जाए। उसके साथ स्टेशनरी की चीज, स्टेशनरी जो बच्चे स्कूल रहते हैं स्कूल की पेंसिल
1: वो स्टेशनरी
0: कॉपी नोटबुक उन सब का दाम जीरो कर दिया कि क्योंकि आगे चलते क्योंकि बच्चे की पढ़ाई के लिए जरूरी था, इसलिए सरकार काउंसिल ने डिसाइड किया कि उनके रेट्स जीरो कर दिए।
1: कुल मिला के आम लोगों के लिए उसमें काफी ऐसे लाभदायक निर्णय थे जो उनको फायदा पहुंचाया। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, एनपी सिंह। सिंह साहब आपका बहुत बहुत सवाल है आपका।
2: सभी पैनलिस्ट को नमस्कार।
0: नमस्कार
2: सर, जब जीएसटी लागू हुआ था तो हमें प्रॉमिस किया गया था कि इंस्पेक्टर राज खत्म होगा। मेरे 2 क्वेश्चन है।
1: जी बोलिए
2: सर। पहली बात तो ये है कि अगर वो कोई जीएसटी अधिकारी सरप्राइज विजिट पे आ जाता है
1: जी,
2: तो क्या उसे क्या चीज मांगी जाए जिससे वो पता लगे कि हाँ ये वाकई में हमारे पास इसी चीज के लिए आया।
1: जी।
2: और दूसरा मेरा एक बड़ा सरल सा बड़ा मतलब आंसर आपसे लेना चाहता हूँ कि हमारा इंटरस्टेट सारा परचेज है
1: जी।
2: जैसे हमारी पंजाब से आती है दिल्ली के लिए तो हमारे पास आईजीएसटी तो बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है
1: जी,
2: लेकिन जब हम इधर सेल करते हैं लोकल करते हैं तो आधा आईजीएसटी आधा सीजीएसटी हो जाता है। तो आईजीएसटी इकट्ठा आया तो वो हमें जब 1 साल के बाद हमें जो बच जाता है वो रिफंड मिलना चाहिए
1: जी।
2: ये 2 क्वेश्चन है सर
0: जी। पहला जो सवाल है अधिकारी वाला, अधिकारी जब आपके पास आता है तो वो एक ऑथराइजेशन एक उसे एक ऊपर अपने अधिकारी से जॉइंट कमिश्नर रैंक के अधिक संयुक्त आयुक्त रैंक के अधिकारी से उसको एक अप्रूवल चाहिए होता है। वो एक चिट्ठी लेकर आएगा, उस लेटर पे DIN होता है, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर को आप CBIC वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं सही में अधिकारी ने इशू किया है कि ये ऐसे ही इसने खुद बनाया हुआ है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। जब अधिकारी आए उसे पूछिए आपको क्या कोई परमिशन है आपके पास आने की, वो देखिए आप उसका आई कार्ड चेक करिए कि वो एक सही में अधिकारी है कि नहीं, आई कार्ड चेक कीजिए उसकी परमिशन देखिए, फिर उसमें एक DIN नंबर होगा DIN डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसको चेक करिए CBIC की वेबसाइट पे, हमने लिंक दिया हुआ है, आप गूगल करेंगे DIN तो आपको आ जाएगा, वहाँ चेक करिए कि सही में वो अधिकारी है कि नहीं। जो आपका दूसरा सवाल है IGST क्रेडिट आएगा, तो IGST क्रेडिट और आपकी लोकल सप्लाई है दिल्ली में पंजाब से आपके पास आ रहा है IGST का आप पेड आपके पास इनपुट आ रहे हैं तो उसको आप IGST को यूज कर सकते हैं CGST SGST अपना टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए, तो उसमें कोई

0: दिक्कत नहीं है, आप अपना आईजीएसटी रेट को यूज करिए, सीजीएसटी एसजीएसटी रेट जो दिल्ली में आप लोकल सप्लाई कर रहे हैं।
1: मुझे लगता है कि ये जवाब उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा और उनकी जो क्वेरी थी वो पूरी हो गई होगी। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं थाने से, महाराष्ट्र के थाने से, गुरुनाथ। गुरुनाथ जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल है आपका?
2: जी सर नमस्कार।
1: जी नमस्कार
2: सर, मुझे पूछना था मतलब जो स्टेट के जो छोटे मोटे समझो जो टैक्स थे वो खत्म करके एक ही बना दिया, तो जो मतलब ये जो जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में मतलब उनके इसमें, तो ये मतलब स्टेट गवर्नमेंट को मतलब ये महीने का महीने या साल भर में मतलब इनको कैसे फंडिंग किया जाता है? और बहुत से जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका जो कंप्लेंट रहता है कि टाइम पे मिलता नहीं है, और मतलब किस किस स्टेट गवर्नमेंट को कितना देना है, मतलब कैसे तय होता है, थोड़ा बताइए।
0: जैसे गुरुनाथ जी आपने महाराष्ट्र में कोई चीज खरीदी, आप महाराष्ट्र में ही आप थाने में जाके किसी दुकान से आपने चीज खरीदी, तो अगर आप बिल देखें तो उसमें उसको उस चीज की वैल्यू कितनी रहेगी, उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी सीधे दिखेगा कितना। मान लीजिए उस पर 5% टैक्स और 2.5% सीजीएसटी, 2.5% स्टेट जीएसटी आपको दिखेगा, तो वो जो स्टेट जीएसटी है वो सीधे जीएसटी स्टेट को जाता है। दूसरा है जैसे आपसे पहले जिन्होंने सवाल पूछा था, पंजाब से उनको दिल्ली में आया, तो पंजाब से दिल्ली में आया तो वो इंटर स्टेट सप्लाई हो गया, एक स्टेट से दूसरे, एक राज्य से दूसरे राज्य में हो गया। अब क्या होगा कि जब वो दिल्ली में आया उनके पास, या आपके पास मान लीजिए आप ही कोई चीज दिल्ली से लेते हैं, दिल्ली से महाराष्ट्र में लेते हैं, तो आपके पास महाराष्ट्र में आया तो उस चीज का कंजम्पशन महाराष्ट्र में हो रहा है, आप उस चीज को उपयोग आप महाराष्ट्र में कर रहे हो, तो उसका जो जीएसटी रेवेन्यू जो भी जीएसटी है उस चीज पे, उसे 50% वो स्टेट को सेटल होता है। जो वो स्टेट्स का इशू है वो सेटलमेंट वाला इशू है, क्योंकि उसमें कई सारी सप्लाई का पता नहीं रहता, क्योंकि सही से डिक्लेयर नहीं होता, टैक्स पेयर ने अगर सही से डिक्लेयर नहीं किया तो फिर उसमें वो डिस्प्यूट आता है कि उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। पर आगे चल के जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है जो सेटलमेंट देखता है, और जीएसटीएन जो सेटलमेंट का सिस्टम वाला सेटलमेंट देखता है, दोनों लोगों ने इस पे काफी काम किया है और कई एक एसओपी बनाया है ताकि आगे चल के हम इसको हम आगे चल के इसको सुधार सकें, ताकि ये सेटलमेंट वाला जो इशू है, जो राज्य का पैसा है, वो इशू रिजॉल्व हो सके।
1: तो जो श्रोता अभी हमसे जुड़े हैं, हम उन्हें बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम वस्तु और सेवा कर भारत के कर सुधारों में परिवर्तनकारी भूमिका पर चर्चा कर रहे हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। सीबीआईसी यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड में वस्तु और सेवा कर नीति प्रभाग के आयुक्त गौरव सिंह जी। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं और ये हैं मनोज। मनोज ने सवाल किया है कि जीएसटी क्या छोटे व्यापारियों के लिए जरूरी है, और जीएसटी को साल में कितने बार भरना होता है?
0: जीएसटी देखिए, जीएसटी में एक थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन है, एक लिमिट है, उसके नीचे हैं आप तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य नहीं है, आप ले सकते हैं चाहें तो, पर आपके लिए अनिवार्य नहीं है। वो है 40 लाख रुपए अगर आप गुड्स पे डील करते हैं, माल में वो करते हैं, और सेवा में करते हैं तो 20 लाख रुपए आपकी वो थ्रेशोल्ड है। छोटे व्यापारी अगर उससे नीचे हैं तो उसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन, पर वो लेना चाहे तो ले सकता है। लेने से ये फ़ायदा है क्योंकि उसको जितना उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट है, उसका उसे इनपुट वो जो भी उसने चीज़ें खरीदारी की उस पर टैक्स पे किया, उस टैक्स का वो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेकर अपनी आगे की जीएसटी जो पे करना है उसमें वो यूज़ कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है उस क्रेडिट को।
1: बिल्कुल।
0: रिटर्न्स हैं जीएसटी में, आपके पास हर महीने एक रिटर्न होता है, क्योंकि आप जो रिटर्न फाइल करते हैं उसका वो किसी से आप टैक्स सप्लाई करते हैं, उसे टैक्स लेते हैं, तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है जो आपसे सामान खरीदता है। पर जीएसटी में छोटे व्यापारी के लिए जिसका 5 करोड़ तक टर्नओवर है, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम है, जहां वो 3 महीने में एक बार एक रिटर्न फाइल करेगा पर मंथली टैक्स अपना पे करेगा। दूसरा, इस काउंसिल में एक कॉन्सेप्ट नेट को मंजूरी मिली है काउंसिल से, जिस पे अभी काम करके अगली काउंसिल में हम उसके वो डिटेल्स लेकर जाएंगे कि कैसे करना है। उसमें प्रपोजल था कि एनुअल रिटर्न, मतलब साल में एक रिटर्न फाइल करेगा और क्वार्टरली 3 महीने में एक पेमेंट करेगा, तो अभी जो 12 साल में हर महीने रिटर्न फाइल कर रहा है उसकी जगह साल में एक करेगा, और जो हर महीने पेमेंट कर रहा है उसका तीन महीने में एक बार पेमेंट करेंगे, तो उससे काफी सरल हो जाएगा रिटर्न छोटे व्यापारी के लिए रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस।
1: एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं शिमला से, राकेश। राकेश जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: जी

0: जी नमस्कार, मैं रातेश कोटखाई शिमला, और मेरा एक प्रश्न है, जैसे कि हम दुकानदार से सामान लेते हैं
1: जी,
0: तो हमें जीएसटी देना पड़ता है, तो अब हमें ये पता कहाँ कैसे चलता है कि दुकानदार हमें जीएसटी रेट पे दे रहा है, हमें पता कैसे चलता है कि कितना जीएसटी हमें हमसे लिया जा रहा है।
2: देखिए, अगर आप बिल देखें, जब दुकानदार को जब आपको चीज बेचता है, उसे बिल देना अनिवार्य है, तो बिल देता है, बिल में आपको चीज की उस वस्तु की वैल्यू जो होगी वो मूल्य बताएगा, मूल्य के ऊपर जीएसटी रेट। अगर कोई चीज आप लेते हैं इस पर 18% जीएसटी है, तो 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी दिखाएगा, तो आपको उसमें क्लियरली दिखेगा आपकी जो इनवॉइस है रसीद में, कि उसमें जीएसटी कितना उसने आपसे चार्ज किया है और कितना एग्जैक्टली उसकी कितना वैल्यू था, कितना रेट था, वो सब उस रसीद पे लिखा रहेगा।
1: गौरव जी, आपसे जानना चाहेंगे, जीएसटी ने केंद्र और राज्यों के बीच कर संबंधों को कैसे बदला है? क्या ये सच है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का ये उदाहरण है?
2: जी, जीएसटी आप सोचिए, एक कानून है जो कि हर स्टेट अलग से अपना अपना वैट चलाता था, उससे पहले सेल्स टैक्स था
1: जी,
2: कानून एक ही था, पर सब स्टेट्स अपना अपना अलग एडमिनिस्टर करते थे, सेंटर अपना अलग करता था। जीएसटी में सबने अपनी पावर्स दी, सबने एक साथ बैठ के हर निर्णय एक साथ होता है। आप सोचिए 57 में मीटिंग्स हो गई, 57 मीटिंग्स में, काउंसिल मीटिंग्स में सिर्फ एक बार वोटिंग हुई लॉटरी पे
1: जी,
2: वरना कभी वोटिंग नहीं होती। हर निर्णय सर्वसम्मति से होता है, कंसेंसस से होता है, जहां हर स्टेट अपनी बात रखता है, हर स्टेट को अपना बात बोलने का मौका मिलता है। वहां तो यहाँ तक कि जब काउंसिल से पहले मीटिंग्स होती हैं कमेटी की, उसमें भी स्टेट के मेंबर्स होते हैं
1: जी,
2: तो उसमें भी स्टेट्स अपने अपना अनुभव शेयर करते हैं, अपने विचार रखते हैं, उसके बाद ही सर्वसम्मति से काउंसिल में जाता है। तो काउंसिल का एक सबसे बड़ा वो है कि एक साथ बैठ के एक चीज पे डिसाइड करना, एक चीज पे सर्वसम्मति से डिसाइड करना, वो सबसे बड़ा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, जीएसटी का अनुभव सबसे अच्छा योगदान है।
1: सबसे बड़ा योगदान ये रहा, और इसके अलावा छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के लिए जीएसटी वरदान साबित हुआ है।
2: जीएसटी ने छोटे व्यापारी के लिए, खासतौर पे छोटे व्यापारी का कंप्लायंस आसान कर दिया जीएसटी में। उसको पता है कि जितना उसने टैक्स दिया है उसका, वो इनपुट टैक्स रेट लेकर अपना आगे कर भुगतान कर सकता है। छोटा व्यापारी जो ईसीओ के माध्यम से अपना, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से अपना सामान बेचना चाहता है देश में, पर उसके लिए हमने और इस बार बहुत सरल कर दिया, वो ईसीओ का जो वेयरहाउस है, गोडाउन है, उसे अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस वो कर सकता है उस स्टेट में जहां पर उसके खुद का ऑफिस नहीं है। तो उससे उसे क्या होगा, वो आराम से रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली ले लेगा और अपना कर भुगतान कर पा, अपना सप्लाई करेगा और सप्लाई कर भुगतान आराम से कर पाएगा। तो जीएसटी ने उसको एक बड़ा आसान तरीका दे दिया है, अपना व्यापार स्टेट से बढ़ा के पूरा देश में उसे करने का, वन नेशन वन टैक्स के तरह।
1: एक और चीज पूछना चाहेंगे, जैसे कोई व्यक्ति है यहाँ दिल्ली में थोक मार्केट से कुछ सामान खरीदता है और वो सप्लाई करता है कुछ जगहों पर, क्या उसको भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है?
2: अगर उसका 40 लाख से ऊपर थ्रेशोल्ड, उसका टर्नओवर,
1: बिक्री हो जाती है,
2: बिक्री अगर साल की 40 लाख से ऊपर है तो उसको करना अनिवार्य है
1: जी, और उसको भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा जब अगर रजिस्ट्रेशन हुआ है तो रिटर्न फाइल भी करना पड़ेगा
2: जी। पर अगर आप देखें, उसको उसने जब चीज खरीदी तो उस पर उसने टैक्स पे किया
1: जी,
2: उसके लिए अच्छा है वो रजिस्ट्रेशन ले ले, ताकि उसका वो इनपुट टैक्स रेट लेकर अपना कर भुगतान कर दे, और वो जो टैक्स उसने सामान लेते हुए खरीदा है उसमें उसको इस्तेमाल
1: खाते में आ जाएगा,
2: तो उसको लाभ है उस जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेकर। अगर नहीं लेगा तो पूरा वाला टैक्स जो उसने पूरा इनपुट
1: वो सारा बेकार चला गया
2: वो
1: जी बिल्कुल। और एक और चीज यहाँ पर जानना चाहेंगे, नए स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं को जीएसटी को लेकर आपकी क्या सलाह है?
2: नए स्टार्टअप्स के लिए जीएसटी, पहला तो रजिस्ट्रेशन सरल होना है, रजिस्ट्रेशन हमने सरल कर दिया उसके लिए, हमारे जीएसटी सिस्टम में आना उसके लिए बहुत आसान कर दिया इस काउंसिल के बाद। दूसरा, अगर वो एक्सपोर्ट करता है तो उसका रिफंड हमने सरल कर दिया, रिटर्न, उसका टर्नओवर कम है तो रिटर्न्स हमने उसके लिए कम कर दिए, लिमिटेड रिटर्न्स हो गए, एक टर्नओवर से नीचे रहेगा। देन उसका जो लिटिगेशन, मान लीजिए डिस्प्यूट होता है कोई टैक्स का कुछ होता है, तो उसके लिए हमने प्रोसेस बड़ी स्ट्रीमलाइन कर दी, 10,000 रुपए से कम का नोटिस नहीं देंगे उसको, तो छोटे अमाउंट के नोटिस कम हो गए उसके लिए। जो लिटिगेशन प्रक्रिया है उसके लिए हमने एक इशू किया है, पूरा एक सर्कुलर इशू करने जा रहे हैं कि कैसे करना है, तो एक ट्रस्ट रहेगा सिस्टम पे उसे कि जो हो रहा है सही हो रहा है मेरे साथ।
1: एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश के रायबरेली से रमाशंकर वाजपेयी जी। रमाशंकर जी, आपका बहुत

0: स्वागत है।
1: नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहता था कि जीएसटी में कटे हुए पैसा अगर कहीं गलत हाथों या गलत उससे जाता है तो हम उसकी शिकायत कहाँ करें।
2: देखिए, जीएसटी में अगर आपको लग रहा है कहीं चोरी हो रही है, कहीं बेईमानी हो रही है, तो आप अपने एक अपने अगर डीजीजीआई को बोल सकते हैं। डीजीजीआई जो है हमारा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस, जो केंद्र सरकार का सीबीआईसी का इंटेलिजेंस विभाग है, उसमें शिकायत कर सकते हैं। आप लोकल कमिश्नरेट में कर सकते हैं शिकायत कि ऐसा हो रहा है चोरी, एंड वो लोग उसको फिर इन्वेस्टिगेट करेंगे कि उसमें आगे क्या कैसे कार्रवाई की जाए। तो ऐसे करके आप शिकायत बता करके अपना वो बता सकते हैं।
0: इसके अलावा हमारा एक और सवाल आपसे है, लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट और ई वे बिल से व्यापार करना अब कितना आसान हुआ है।
2: ई वे बिल हर एक ट्रांसपोर्टेशन में, जब 50,000 से ऊपर का सामान एक ट्रांसपोर्टेशन ट्रक में जाता है
0: जी,
2: सो ई वे बिल अनिवार्य है। ई वे बिल में शिकायतें आती थी कि चेकिंग बहुत होती है, बहुत ज़्यादा उसमें डिले होता है, हरासमेंट होता है। तो इस काउंसिल ने इस बार देखा इसको, इशू को। अब क्या काउंसिल ने किया है, ट्रांजिट स्टेट में, मान लीजिए दिल्ली से सामान जा रहा है केरला
0: जी,
2: बीच में ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
0: कई स्टेट
2: पड़े, तो कोई सिर्फ दिल्ली और केरल ही उसे चेक कर पाएंगे, बीच वाले
0: बीच कोई चेक नहीं,
2: कोई
0: कर
2: चेक नहीं कर।
0: बहुत बड़ी सुविधा,
2: बहुत बड़ी सुविधा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा तकलीफ थी ट्रांसपोर्टर्स के लिए और ट्रेड छोटे व्यापारियों के लिए, कि कोई भी चेक कर लेता था और फिर वो डिले होता था, समय लगता था चेकिंग में और सब में। तो वो चीज बंद कर दी इस बार काउंसिल ने। और सिर्फ आप ऐसे नहीं कर सकते कि सड़क पे खड़े होकर जो आ रहा है उसे चेक करेंगे, अब आपको बड़ी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस चाहिए कि इस ट्रक में चोरी है। आपके पास पहले इंटेलिजेंस होनी चाहिए, संयुक्त आयुक्त रैंक के ऑफिसर के अप्रूवल चाहिए आपको, कि वो अप्रूव करेंगे तभी आप जा सकते हैं। आपके पास क्लियर इंटेलिजेंस होनी चाहिए यही ट्रक में चोरी है
0: जी,
2: तो उससे काफी फर्क पड़ जाएगा ई वे बिल की उसमें।
0: गौरव जी, एक और सवाल आपसे है कि क्या लगता है कि जीएसटी ने भारत को विदेशी निवेश के लिए ज्यादा आकर्षक बनाया है।
2: जी, जीएसटी ने एक सर्टेनिटी दिलाई है विदेशी निवेशकों को कि जीएसटी है तो पूरे देश में एक ही टैक्स है
0: जी,
2: अलग अलग इंटरप्रिटेशन नहीं होंगे। एक जीएसटी काउंसिल है जो कि जब भी उनकी समस्याएं आती हैं तो जीएसटी काउंसिल उनको सुनता है। जीएसटी काउंसिल ने 250 से अधिक सर्कुलर्स इशू किए हैं जहां भी ट्रेड को दिक्कत होती थी उसको क्लैरिफाई करने के लिए। तो जीएसटी एक सर्टेनिटी, जो टैक्स सर्टेनिटी चाहिए निवेशक को
0: जी,
2: वो जीएसटी ने दिलाई है।
0: और इसके अलावा एक और छोटा सा सवाल है कि कई अर्थशास्त्री कहते थे कि जीएसटी ने छोटे कुटीर उद्योगों को खत्म कर दिया है।
2: सर, अब हमारे यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन हमारे 67 लाख से उठ बढ़ के 1.7 करोड़ हो गए हैं
0: जी।
2: तो छोटे आदमी बहुत सारे जीएसटी में आए। जीएसटी ने एक फॉर्मलाइज कर दिया इकोनॉमी को, जो हमारी इकोनॉमी काफी कैश बेस्ड थी, काफी वो थी, बिखरी हुई थी, उसको हमने फॉर्मलाइज करके जीएसटी ने एक फॉर्मल चैनल पे ले आया है जीएसटी।
0: तो श्रोताओं, जीएसटी ने साबित कर दिया है कि जब एक देश एक सोच से चलता है तो परिवर्तन जरूर आता है, सुधार की ये यात्रा जारी है। और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हम इस चर्चा को यहीं पर विराम दें। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और साथ ही सीबीआईसी यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड में वस्तु और सेवा कर नीति प्रभाग के आयुक्त गौरव सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। गौरव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतने सारे सवालों को इतने आसानी से दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsgtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 बजे किसी और मुद्दे पर चर्चा के लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुकेश कुमार को कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: सभी सुनने वालों को नमस्कार। छाया गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ, मेरा नाम है सलमा। हमारी आंखों में कुछ ख्वाब बेकरार हैं, तेरे फिराक के मौसम सोगवार हैं। न जाने किसकी नजर लग गई बहारों को, चमन के फूल सारे दाखदार हैं। वो एक शख्स जो आबाद था कभी दिल में, उसी के नक्श वहाँ आश्कार हैं। हमें तो रास ना आई कभी रस्म उल्फत, अपने आप से हम भी शर्मसार हैं। ये उम्र भी अजब उम्र रायगा निकली, हम अपने ख्वाब लिए तार तार हैं। हमें खबर है कि वो बाबे उल्फत बंद हुआ, मगर वो जख्म निहा दिल में बरकरार हैं। किसी के नाम से वाबस्ता थी मताए हयात, उसका नाम लब पे मगर बे इख्तियार है।
1: वो जब याद आए

मैंने सब कागज पे लिख दिया था बहुत पहले, दिल का हर राज कह दिया था बहुत पहले। अब जो पूछोगे तो क्या बाकी है कहने को, जो कहना था कह दिया था बहुत पहले। मेरे जख्मों की गहराई ना पूछो मुझसे, मैंने हर दर्द को अपना लिया था बहुत पहले। तुमको फुर्सत ही ना थी हाले दिल सुनने की, हमने सब कुछ तो कह दिया था बहुत पहले। जिसको तुम आज भी एक ख्वाब समझते हो, वो हकीकत थी, हमने देख लिया था बहुत पहले। हमने हर रंज को किस्मत का लिखा मान लिया था, तुमको खोने का भी डर था बहुत पहले। तुमने लौट आने का वादा तो किया था हमसे, दिल ने मगर अंजाम समझ लिया था बहुत पहले।

हम टूटे ये दिल भी टूटा, चलो जाने दो, क्या सुनोगे क्या कुरे दोगे, जाने दो, दर्द की बात अगर छेड़ी तो बिखर जाएंगे, जख्म सोए हैं उन्हें मत छेड़ो, जाने दो। हमने माना कि बहुत रंज दिया है तुमने, अब ना शिकवे ना गिले, बस छोड़ो जाने दो। दिल ने बरसों जिसे आंखों में सजाया था, वो ख्वाब था अब ख्वाब समझो, जाने दो। जिंदगी फिर भी गुजर जाएगी खामोशी से, हम अगर टूट गए हैं तो गए हैं, जाने दो। जिसको अपना कहा वो अपना था ही कब, अब ये किस्सा भी हुआ पुराना, चलो

आके तुझ बिन इस तरह ऐ दोस्त घबराता हूँ मैं, जैसे हर शय में किसी शय की कमी पाता हूँ मैं। छाया गीत कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं छाया गीत। ऐन से फकत इश्क नहीं अजाब भी होता है, दिल के जख्मों का कोई हिसाब भी होता है, दिल के बहलाने को काफी नहीं वादों की रोशनी, चश्मे तर में आलम इस्तेराब भी होता है। हर ताल्लुक को समझ लेना मोहब्बत तो नहीं, कुछ ताल्लुक में फरेब बेहिसाब भी होता है। इश्क में हर शख्स को मिलती नहीं मंजिल, राहे उल्फत में दश्ते सराब भी होता है। इश्क इंसान को फकत आबाद ही नहीं करता, इसमें आदमी का खाना खराब भी होता है।

मैंने आज फिर बैठ के तन्हाई में उजड़े दिल उदास आंखों का हिसाब लिखा। हर ख्वाब का जिक्र जो तेरे साथ देखा था, हर उस जख्म पे खामोशी का अजाब लिखा। जो लफ्ज लबों तक आके इजहार ना बन सके, उन्हें अशकों की जुबा में बेनकाब लिखा। तेरे बाद जो गुजरी दिले बेकरार पे, हर एक दिन को दर्द की किताब लिखा। ना कोई गिला ना शिकायत का बाब लिखा, मगर जो दिल ने कहा वो बेहिजाब लिखा। अब क्या उम्मीद वफा, क्या इंतजार वसल, हर एक आरजू को वक्त ने नायाब लिखा।

हाले दिल तो क्या कहें, ये एक लम्हा ही सदियों का इंतजार है बस। ना उसने वादा किया ना वफा का इकरार, मगर ये दिल भी अजब बेइख्तियार है बस। क्या सुनाएं उस दौरे मुख्तसर की कहानी, के हमें रास ना आई इस